0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া ছয় বজাৰ পৰা ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: मैं जानता हूं कि paper leak एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
3: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife Geetanjali Angmo and senior leaders of Apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Meanwhile, Prime Minister Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Baliga at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear the cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The move is aimed at ensuring the expeditious adjudication of cases related to unfair practices in public examinations. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in the examination paper leaks. Delhi Metro Rail Corporation DMRC has informed that 17 metro stations will be closed from 7:30 a.m. today till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Jhandewalan, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The center has appointed secretaries in different ministries and departments. Vineet Doshi, who is presently Secretary, Higher Education in Ministry of Education, has been appointed as the Secretary, Ministry of Panchayati Raj. Naresh Pal Gangwar will be the new Secretary, Higher Education. T.K. Anil Kumar will be the Secretary, School Education and Literacy. The Appointment Committee of the Cabinet approved these appointments. And that is the end of this news bulletin.

0: अरे बस बस बस बस, साँप ही रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसिमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
6: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
5: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
6: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया.
5: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
7: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, along with the connected offences. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at Tees Hazari Courts, has been transferred to the Ross Avenue Courts to head the specially designated court. The initiative is aimed at ensuring expeditious adjudication of cases involving the use of unfair means in public examinations. The notification was issued hours after Prime Minister Narendra Modi announced the center's decision to establish fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Rohan for Akashwani News, Delhi.
5: Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. We have a report.
8: Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Mr. Wangchuk went on a hunger strike from 28th of last month demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has urged Mr. Wangchuk to follow his daily routine as advised by the doctors and regain his previous weight as soon as possible. The Prime Minister also prayed to the Almighty that Mr. Wangchuk remains healthy. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has announced the closure of 17 metro stations with effect from 7:30 a.m. today until further notice due to security reasons in the national capital. These stations include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, RK Ashram Marg, Barakhamba Road, Mandi House, Central Secretariat, ITO and others. However, the interchange facilities will continue to be available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handlers involved in coordinated misinformation campaigns

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्टर कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over the NEET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., the house paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. Later, when the speaker tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering, demanding resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Mr. Birla urged opposition members to cooperate in running the House, but they did not pay heed to the advice of the Speaker, which led to the adjournment of the House till 12 noon. The upper house also observed silence as a mark of respect to the memory of the martyrs. After that, the chairman tried to take up zero hour and allowed Leader of Opposition Mallikarjun Kharge to speak. Mr. Kharge raised the issue of NEET paper leak and student protest over the matter. As uproar continued from the opposition and treasury benches, the chairman adjourned the house till 12 noon. Prime Minister Narendra Modi has said that he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया.
4: The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night. In the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh, Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions.

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। सैनिक भाइयों, मैं पूनम बरुआ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में। हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरंग, 1:40 पर कार्यक्रम होगा तरन्नुम।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में सनम रे फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए जावेद अली की आवाज में, भोला फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में, जब वी मेट फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रॉक ऑन फिल्म से ये गीत फरहान अख्तर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

हमारे अगले कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल शनिवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम एक और अनेक।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गुंजन, 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 282.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम पेश कर रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ 2 आंखें 12 हाथ फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले की आवाज में, अब क्या होगा फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, बसंत बहार फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मैं चुप रहूंगी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। अवतार फिल्म से आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए आराधना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सब रंग। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लव स्टोरी फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, चलती का नाम, गारी फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाजों में किनारा फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए हेमलता की आवाज में, आप तो ऐसे ना थे फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनिए उदित नारायण की आवाज में, सिर्फ तुम फिल्म से।

इस गीत के साथ आज का सबरंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर से, मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर, और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब पेश है कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए सोमेश कुमार की आवाज में गालिब एल्बम से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए पैगाम एल्बम से हरिहरन की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में, फॉरगेट मी नॉट एल्बम से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश की शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू

0: रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
2: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के सम्पन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
3: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
4: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
5: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाव थराद और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, उमंग फिल्म से आवाज है किशोर कुमार की।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, चाइनाटाउन फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, आरजू फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आर पार फिल्म से आवाजें हैं गीता दत्त और किशोर कुमार की।

फिल्म आर पार से सुना ये गीत मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत दो कलिया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतिका। अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत हावड़ा ब्रिज फिल्म से गीता दत्त की आवाज में।

इसी के साथ गीती का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों के लिए भी समाप्त होता है आज का प्रसारण। कल 12:10 पर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूनम बरुआ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: नमस्कार, आदाब, वड़कम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मस्त मलंग आरजे श्वेता और आपके लिए लेकर आ गई हूँ खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। जैसा कि आप हर रोज सुनते हैं रेडियो डॉक्टर और उसमें कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज का टॉपिक है सीजनल आई फ्लू, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितलियाल, आरपी सेंटर फॉर ऑप्थल्मिक साइंस एम्स। और हम जो है इस बारे में काफी सारी बातें करने वाले हैं। आई फ्लू मॉनसून के सीजन में कंजक्टिवाइटिस या आंखों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या जो होती है उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉनसून के दौरान नमी या ह्यूमिडिटी होती है जो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ाने में और भी ज्यादा मदद करती है। हम अपने स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे FM रेनबो के स्टूडियो में।
2: नमस्कार श्वेता जी, एंड जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं हमें, उनको भी हमारे तरफ से नमस्कार।
1: सर, इसके अगर लक्षण के बारे में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन लक्षण है वो क्या होता है, ताकि वो देखते ही कोई भी अगर आसपास का इंसान भी देख रहा है तो समझ जाए कि ये आई फ्लू है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सके।
2: सबसे इम्पोर्टेंट तो अचानक दोनों आंखों में लाली आना, ये सबसे पहला सिम्टम होता है या साइन होता है लोगों के लिए। उस लाली के साथ साथ में आंख में चुभन होना, या हम कहते हैं इरिटेशन, या ऐसे लगता है कि कोई आंख में कुछ अटक रही हो और अड़क रही हो।
1: जी जी,
2: ये दो कॉमन जो है सिम्टम होते हैं। साथ में आंखों से पानी आना और कीचड़ आना और जो है पलकों में सूजन आना, ये चार मुख्य जो है सिम्टम्स होते हैं जब भी एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है।
1: जी,
2: और हम देखते हैं कि हमेशा जो है ये दोनों आंख में एक साथ हो जाता है और आपको लगता है कि आंखों में बहुत जोर का जो है रड़कन हो रही है, कभी कभी आंखों में दर्द और आंखों के गोले के चारों तरफ भी दर्द होता रहता है।
1: जी सर, और ये कहा जाता है कि जितनी उसमें खुजली लग रही होती है उतना ही उसको नहीं खुजाना चाहिए, हाथों से स्पेशली उसको नहीं मलना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त ऐसी इरिटेशन होती है कि आप नहीं रोक सकते अपने हाथ को, तो उस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं या हटा सकते हैं?
2: आप सही कह रहे हैं, जब अक्यूट स्टेज होता है, जब शुरुआत होती है, तो आंखों में बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए आंख लाल हो जाती है। ऐसे में आंखों में खुजली होना या आंखों में चुभन या रड़कन होना हमेशा साथ में रहता है। तो आपका, जैसे आप सही कह रहे हैं कि मन करता है कि आंखों को मल लें या रगड़ लें जिससे कि आपकी जो है ये चुभन खत्म हो जाए, लेकिन उससे और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आपके हाथें आंखों में लगती हैं तो चांसेस जो इन्फेक्शन फैलने के भी रहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन देखने से नहीं फैलता, इन्फेक्शन छूने से फैलता है। इसलिए हाथों की और आंखों की सफाई जो है एक मुख्य प्रिकॉशन इसमें होता है। तो हम जानते हैं जब भी ऐसी असुविधा हो रही हो, एक तो आंखों को साफ पानी या ठंडे पानी से धो लें, उससे भी आपको आराम मिलेगा, या फिर ठंडे रुमाल से आप जो है आंखों में सेक कर सकते हैं दिन में 2-3 बार, और काला चश्मा लगा लीजिए जिससे कि रोशनी से आपको दिक्कत कम आएगी। और कभी कभी जो है हम आंखों में ड्रॉप डालने के लिए बताते हैं, जिसमें नॉर्मली हम एक एंटीबायोटिक ड्रॉप जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जो सारे बैक्टीरिया को कवर कर दे प्रोफाइलेक्टिकली, या फिर आर्टिफिशियल टीयर्स जो कि आंखों को नम रखते हैं, ऐसी दवाइयां आंखों में डालनी चाहिए।
1: जी, आज का टॉपिक है सीजनल आई फ्लू। आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ।

0: नैना लागे अगर इस तरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर इन आंखों में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, तो ये आंखें बहुत तकलीफ देती हैं। ना सिर्फ आपको देखने में प्रॉब्लम होती है बल्कि पूरा दिन इरिटेशन भी होती रहती है। और आज हम रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं सीजनल आई फ्लू के बारे में, एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी फैलता है। और ये कहा जाता है कि ये सिर्फ देखने से फैल जाता है। डॉक्टर साहब, ये बात कहां तक ठीक है या कहां तक गलत है?
1: मेरे ख्याल से लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि बीमारी इतनी तेजी से फैलती है, जैसे हम कहते हैं आप उसे मिलने गए तो आपको बीमारी हो गई। एक्चुअली ये देखने से फैलती नहीं है और सांस से भी नहीं फैलती है, ये छूने से फैलती है। यदि आंख में आपके जो डिस्चार्ज हो रहा है वह हाथ में लग जाए और आपने हाथ मिला लिया उनसे, या वही टेबल चेयर या वही लैपटॉप शेयर करते हैं या मोबाइल शेयर कर लिया, तो उनमें चांसेस इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन फैलने से रोकना एटलीस्ट अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए बहुत जरूरी है। कुछ प्रिकॉशन लेंगे तो ये समस्या अपने आप जो है कम हो जाएगी।
0: जी सर, ऐसा ही सवाल हमारे पास शैली ने भेजा है दिल्ली से। वो पूछ रहे हैं कि अगर फैमिली में किसी को भी इन्फेक्शन हो जाए तो बाकी मेंबर्स को कैसे और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें दो तरह की प्रिकॉशन लेने हैं। एक तो उनको क्या करना चाहिए जिनको इन्फेक्शन हो गया हो
0: जी,
1: जिससे कि उनकी बीमारी दूसरे को ना लगे, या फिर जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ अपने आप को कैसे बचाए। तो इसके लिए जिनको इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा सा अपने आप को अपने परिवार से अलग रखें। अपना जो टाउल है, रुमाल है, या आपका जो है

0: होते हैं। हम जानते हैं आजकल एक्यूट एपिडेमिक चल रहा है कंजंक्टिवाइटिस का, लेकिन कुछ लोगों को और कारण से भी लाली हो सकती है, इसलिए आपको हॉस्पिटल आके डॉक्टर से चेक जरूर कराना चाहिए।
1: सर, हॉस्पिटल जाते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब ये कंजंक्टिवाइटिस जो है इतना फ्लू फैल रहा है? क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप जाते अच्छे खासे लेकिन वहां से कंजंक्टिवाइटिस लेकर आ जाते हैं।
0: हाँ, जैसे मैंने कहा जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो पहला काम तो ये है कि आप जो है एक हाथ में जो है रुमाल जरूर रखिए जेब में जो आपके लिए यूज करना हो, और एक जो है गॉगल्स लगाइए जरूर
1: जी,
0: क्योंकि उससे प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे चीजों को नहीं छुए जो अनवांटेड है। यदि आप किसी चीज बैठते हैं तो जहां ऐसे दिमाग में रखिए कि आपको अपने चेहरे में या आंखों में हाथ नहीं लगाना है। आपको आंख में खुजली हो रही है तो पहले हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर आंखों या चेहरे को टच कर सकते हैं
1: जी।
0: तो ये जैसे मैंने कहा कि जहां तक हो सके चीजें जो है आपके फेस में नहीं जानी चाहिए
1: जी।
0: तो सबसे इम्पोर्टेंट हाथ ही होता है, तो हाथ साफ रखेंगे तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा।
1: बिल्कुल। एक सवाल आया है शशि का दिल्ली से, और वो ये कह रहे हैं कि इफ माई हेल्पर हैज द प्रॉब्लम ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, शुड आई अलाउ हर टू कम एंड क्लीन द हाउस एंड यूटेंसिल्स, प्लीज सजेस्ट मी।
0: ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि ये हेल्पर की नहीं है, पूरे जो है वर्किंग एरिया में बहुत से लोग जो है मेडिकल लीव के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो शुरू के एक दो दिन ऐसे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन दूसरों को फैल सकता है। यदि आपकी बीमारी 3-4 दिन हो चुकी है तो उसके बाद इन्फेक्शन दूसरों को नहीं फैल सकता है, क्योंकि वायरस जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एक एक्यूट फेज में 1 या 2 दिन जो है हम छुट्टी दे सकते हैं यदि उसके बिना काम चल सकता है। यदि उस आदमी के बिना काम नहीं चल सकता तो प्रिकॉशन के साथ उस आदमी से काम करा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हम प्रिकॉशन लेंगे तो हमें इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, आदमी जो भी आदमी साथ में क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि उसको हम टच नहीं करेंगे, उसे हाथ नहीं मिलाएंगे,
1: बिल्कुल वैसे ही जैसे जुकाम और खांसी में।
0: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। तो बहुत ही अक्यूट फेज है तो जरूर यस, उसकी आंख में बहुत कीचड़ आ रहा हो, बहुत डिस्चार्ज हो और उसको बार बार जो है नाक से पानी आ रहा हो, ऐसे सिचुएशन में 1-2 दिन के लिए छुट्टी दे सकते हैं।
1: सर, जैसा आप पहले बता चुके, एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास सवाल आया है और ये इमरान ने भेजा है बिहार से, कि ये आई फ्लू क्यों होता है और कैसे हो जाता है?
0: आई फ्लू ऐसे तो होता रहता है, लेकिन ये एक बरसात के मौसम में एकदम से पूरे सोसाइटी में एकदम से फैल जाता है, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हर 300 या 500 आदमी जो है इस आंख की बीमारी से पीड़ित है। हॉस्पिटल में भी जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, कम से कम 80% केसेस कंजंक्टिवाइटिस के आ रहे हैं हर दिन
1: जी।
0: और ये लोड बढ़ता जा रहा है। तो मैं जैसे हमने पहले कहा था, ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मली एडिनो वायरस से होता है ये बीमारी जो है और तेजी से फैलता है
1: जी।
0: ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे आप हमने बताया था, एक तो नमी बहुत बढ़ जाती है बरसात के मौसम में, दूसरा बारिश ज्यादा होती है, बाढ़ आया हुआ है पूरे नॉर्थ इंडिया में, उससे भी हाइजीन भी कम हो जाता है। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है तब तक नहीं हो सकती जब तक आंख में जो है आपके कीचड़ ऐसे रह रहा हो, आंख की सफाई नहीं हो रही हो, तभी जाके इन्फेक्शन होता है और फैलता भी है। तो हाइजीन कम होना, थोड़ा मौसम में थोड़ा सा नमी होना, और जो है और वायरस का जो है एक दूसरे से इफेक्ट करना, थोड़ी सी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है ऐसे सिचुएशन में, तो बीमारी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं
1: जी। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ को आपने ट्यूनिंग किया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें पूरे भारत में सुन रहे हैं, और न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस गाने के उस पार जब हम आएंगे तो फिर हम जानेंगे कि किस तरह से जब आईज का कोई भी ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस करें कि कंजंक्टिवाइटिस ना हो।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आंखें भर दीजिए सपनों से बिल्कुल, और इन सपनों से जो है दुनिया हसीन लगती है, लेकिन अगर आंखों में कुछ भी परेशानी होती है तो ये दुनिया उतनी ही जो है ना, ऐसा लगता है कि बस इरिटेशन हो रही है, स्पेशली जब कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है या फिर आई फ्लू हो जाता है। और आज का वही टॉपिक है हमारा रेडियो डॉक्टर का। मैं हूं मस मलंग आरजी श्वेता, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर जीवन सिंह तितलियाल। और सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, अपना नाम बताइए।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार।
3: नमस्कार जी,
1: जी अपना सवाल पूछिए।
2: मैं एक आरबी पेशेंट हूँ
1: जी, क्या परेशानी है आपको, अपनी परेशानी बताइए।
2: डॉक्टर साहब को बता दिया, मैं आरबी पेशेंट हूँ, समझ गए डॉक्टर साहब
1: जी।
2: हाँ डॉक्टर साहब, तो मैं ये कह रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आँख में मोतिया है, आपका ऑपरेशन कराना है, इसमें रोशनी तो आपकी बढ़ेगी नहीं, लेकिन मोतिया क्लियर हो जाएगा। तो वो मैंने एक आँख को तो करा लिया था, एक आंख का नहीं कराया, लेकिन अब इतनी परेशानी है, आंख में धुंध रहती है बिल्कुल, जैसे बादल हो रहा था ना, घटा जाती है, इस तरह रहता है। अब इस तरह का कुछ है, कोई दवाई या कोई ऐसी चीज जो मतलब क्लियरिटी हो जाए, मैं दिखाने अगर आ जाऊँ आरबीआई सेंटर में?
3: नहीं नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा जरूर दिखाने आइए आप, क्योंकि ऐसी बीमारी आपको है अनफॉर्चुनेटली, जिसका कोई खास इलाज है नहीं सुधार करने के लिए, लेकिन आपको कैटरेक्ट है तो उसका ऑपरेशन हो सकता है। उसके बाद थोड़ी सी आपकी नजर में या आप कंट्रास्ट में बढ़ोतरी हो सकती है, और दूसरा जो है हम आपको जो है अच्छे से लो विजन एड्स की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपको काम करने में सुविधा हो सकती है। आजकल बड़े सारे नए लो विजन एड्स आ गए, जिससे ऐसे बीमारियों को से पीड़ित लोगों को सुविधा दी जा सकती है। आप जरूर आइए हमारे हॉस्पिटल में।
2: दोबारा सुविधा में क्या क्या चीज है, क्या बताया आपने?
1: आप जब हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको पूरी डिटेल जो है वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा जी। सर जैसे इन्होंने बोला कि इन्हें कैटरिक की प्रॉब्लम है, और यही गाने से पहले मैंने भी कहा था कि अगर किसी को भी कैटरिक का ऑपरेशन होता है या कोई भी ऑपरेशन होता है आईज से रिलेटेड, तो उस वक्त हमें और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमें ये कंजंक्टिवाइटिस ना हो, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में ही रहना होता है, कुछ घंटों तक तो रहना ही पड़ता है या फिर एक दिन रहना पड़ता है, तो ऐसे में हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
3: हाँ, इसमें जैसे जो लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उनको भी अपनी जो है प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी है
1: जी।
3: ये देखना जरूरी है कि आपके जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत भीड़ न हो, आपके आस

0: पास में सामान है जो रखें साफ हो
1: जी,
0: और जो है ऑपरेशन के बाद जो है जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको ठीक से फॉलो किया जाए। आपको ये जरूर देखना है कि काला चश्मा लगाना जरूरी है
1: जी,
0: और ड्रॉप डालते समय बिना टच किए, आप बिना आंख को टच किए ऊपर से ड्रॉप घेरनी है आंखों में
1: जी,
0: और आंखों में हाथ नहीं लगाना है। ये तीन चार प्रिकॉशन बहुत जरूरी रखने हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने हाथों को धो लीजिए ड्रॉप डालने से पहले, और ड्रॉप डालने के बाद उसको कैप ठीक से लगाइए, जो ड्रॉपर है उसमें हाथ टच नहीं होना चाहिए, इससे जो है बीमारी फैलने में आपको होने में चांसेस कम हो जाएंगे
1: जी।
0: दूसरा, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी प्रिकॉशन रखना चाहिए, खुदा ना खास्ता उनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है
1: जी, जी, जी।
0: तो कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम 2 हफ्ते नहीं लगानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: नहीं तो दुविधा उनकी जो है असुविधाएं बढ़ सकती है
1: जी।
0: और जो लोग बिजी एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर जैसे ट्रैफिक एरिया में काम कर रहे हैं, उनको भी ये काला चश्मा लगाना चाहिए। और जैसे लगता है कि आपके हाथें कोई गलत जगह में टच हो गई हो जहां पर इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं, तो इमीडिएटली हाथों को साफ करना चाहिए, धोकर रख लीजिए या सैनिटाइज हाथों को कर लीजिए, उससे भी आपको जो है बीमारी फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे
1: जी। सर, हमारे पास सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि मैम मुझे संडे को आई फ्लू हुआ था और डॉक्टर से दवाई ली थी तो उन्होंने ड्रॉप्स जो है वो आंखों में डालने के लिए बताई थी, अब जो है उनके आंखों में धुंधलापन है और साथ ही साथ उन्हें व्हाइट सा कुछ चिपचिपा रहता है ज्यादा, जिससे दर्द भी होता है, तो थोड़ा सा और आप अगर इस तरफ बता दें तो क्या करना है, पानी भी आता है।
0: हाँ, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि ये बीमारी जो है देखा जाए तो सेल्फ लिमिटिंग है, इसका अपना फेज होता है, कम से कम जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ये बीमारी के सिम्टम रह सकते हैं। शुरू के कुछ दिनों में कुछ भी दवाई कर लो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आंख में सूजन, लाली और जो आपका जो है चिपकना या जो डिस्चार्ज हो रहा है कम से कम 1 हफ्ते रह सकता है। तो ऐसे में यदि आपको जो है जैसे आप बता रहे हैं आंख में धुंधलापन आ रहा है तो ये सीरियस हो सकता है, इसके लिए आपको एक बार प्रॉपर चेकअप करा लीजिए, नहीं तो हमें दवाइयां चेंज भी करनी पड़ सकती है। और जरूर ये रिक्वेस्ट करिए कि आपको डिस्चार्ज आ रहा है उसका एक बार जो है कल्चर करा लें या सेंसिटिविटी करा लें, वो भी बहुत जरूरी है, उससे हमें पता चल जाती है कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना एंटीबायोटिक चेंज कर सकते हैं
1: जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या बोलते हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए।
2: जी जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ
1: जी। क्या सवाल है आपका
2: डॉक्टर साहब? खास करके गर्मियों में जब मैं बाहर निकलता हूँ, दिन में से धूप तेज होती है, आता जाता हूँ, उसके बाद अगर नहाता हूँ तो मेरे आंखों में लल्लाई से आ जाती है, तो इसके बारे में हम मतलब क्या कर सकते हैं, इसके लिए दवा मतलब लेना पड़ेगी या गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है?
0: नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये सीजन ऐसा है कि आंखों में जो है थोड़ा सा सूखापन आ जाता है गर्मी के सीजन में स्पेशली, और हम ये उन लोगों को होता है जिनको थोड़ा सा पहले से थोड़ी बहुत की ड्राइनेस की समस्या रहती है, तो हम ये चाहते हैं कि आप नहा हैं तो उसमें जो है ये कोशिश करें कि आंख में पानी न जाए या साबुन का पानी नहीं जाए, उससे भी लाली हो जाती है। यदि आपको ये लगातार रहता है तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप सिंपल जो है एक आर्टिफिशियल टियर जो है दिन में 2 या 3 बार डालेंगे तो समस्या कम हो जाएगी। CMC 0.5% नहाने के बाद भी एक ड्रॉप जरूर डालिएगा आप
1: जी। कई बार साबुन की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, और जैसा आपने बताया है कि आई ड्रॉप्स के बारे में, हमारे पास सवाल आया है सुधीर सिंह का कुतुबगढ़ से, और ये कहते हैं कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स कितने लंबे समय तक जो है वो डाल सकते हैं?
0: लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो है नॉर्मली तो बहुत सेफ होता है, इससे जो है आंख में नुकसान नहीं होता है
1: जी।
0: यदि आपको 1 महीने या 2 महीने डालनी हो तो कोई भी जो है कंपनी की ड्रॉप डाल सकते हैं। यदि बहुत लंबे समय के लिए डालना हो, जैसे बहुत सी ऐसी बीमारी होती है ड्राइनेस की जो जिसमें लाइफ लॉन्ग जो है आपको लुब्रिकेंट डालना पड़ सकता है, ऐसे सिचुएशन में प्रिजर्वेटिव फ्री, जिस ड्रॉप में प्रिजर्वेटिव न हो वो डालना चाहिए, जिससे कि आपके आंख में कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि प्रिजर्वेटिव से ही जो है आंख में दिक्कत आती है, एंटीबायोटिक से नहीं आती। तो कोशिश करें कि आप प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप लें, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है
1: जी। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका और अपना सवाल पूछिए।
3: इमदादुल, वेस्ट बंगाल से।
1: जी, क्या सवाल है आपका?
3: अभी जो हो रहा है
1: जी,
3: आँख फुगे की तरह फूल जाती है, उसका ड्रॉप वो कान में जो डालता है वो डालो तो यूज करो तो चलेगा?
0: नहीं आप सही कह रहे हैं, कभी कभी जो है ये एंटीबायोटिक ड्रॉप जो है आंख हाँ। वाले कान वाले एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये उसमें जो आप देख लीजिए प्रॉपरली जो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आंख वाली हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें जो है दवाई का कंसेंट्रेशन और जो प्रिजर्वेटिव यूज होता है थोड़ी सी कम हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि जो है आंख वाली ड्रॉप जो है आंख में डालें, आंख वाली ड्रॉप कान में डाल सकते हैं, लेकिन उल्टा मत करिएगा।
3: अच्छा, मैंने डॉक्टर

0: और कोई दिखाया था बोला चलेगा, इसके
1: नहीं,
0: लिए मैं पूछ रहा हूँ।
1: नहीं, लोग सब कहते चलेगा, ये अक्यूट प्रॉब्लम है। और
0: अच्छा।
1: आजकल जो है हमारे बड़े सारे जेनेरिक ड्रॉप्स मिलते हैं, काफी सस्ते होते हैं, क्योंकि आंख में जब भी ये आई फ्लू होता है तो आंख की जो सतह होती है वो जो है कमजोर हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। इसलिए नया बॉटल खोलना चाहिए हर बार और नया ड्रॉप डालना चाहिए।
2: जी
0: थैंक
2: यू सो मच डॉक्टर साहब। आपने जैसे बताया कि नया ड्रॉप या नया बॉटल लेना चाहिए, इवन ये कहा जाता है कि दोनों आंखों के लिए अलग अलग बॉटल्स भी अगर यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है।
1: हाँ, उसमें कभी कभी आप जो है प्रिकॉशन ज्यादा लेंगे तो दूसरी आंख में इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं।
2: जी
1: नॉर्मली जो है जो लोग अच्छा प्रिकॉशन लेते हैं तो एक ही आंख में भी हो सकता है, लेकिन ये वायरस इतना फास्ट होता है कि दोनों में हो ही जाता है।
2: जी।
1: लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे आप सही बता रहे हैं श्वेता जी, के कर सकते हैं हम लोग।
2: जी सर, इन्फ्लामेशन जब बढ़ जाता है तो आईज में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम क्या करें ऐसा कि इन्फ्लामेशन ना बढ़े बॉडी में या आईज में?
1: हाँ, इस वाले बीमारी में तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और 3 दिन के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है।
2: जी।
1: लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो क्रॉनिक होती है, उसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। लेकिन इस कंजक्टिवाइटिस में बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, उससे जो है आंखों के परतें जो होती है लेयर्स कमजोर हो जाती है, कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको जब कॉर्निया में धब्बे आने लगते हैं, जो काले पुतले धब्बे आए, तब जाके हम सोचते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी देना है कि नहीं देना है। वो केवल डॉक्टर लिख के देगा, तभी आपको डालनी चाहिए, अपने मन से अपनी तरफ से नहीं डालनी चाहिए।
2: जी, हमारे पास एक और सवाल आया, वो ये कह रहे हैं कि जो घरेलू इलाज होते हैं वो कहाँ तक सही होते हैं? कई लोग बोलते हैं जब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो सिंदूर आंख में लगा ले तो उसे सही हो जाता है, तो ये कहाँ तक सही है?
1: जैसे हम बताते आ रहे हैं कि ये बीमारी जो है अपने आप ठीक हो जाती है, हफ्ते दो हफ्ते लग जाते हैं इसमें, और जो है ऐसे घरेलू ट्रीटमेंट जो है कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि वही ऐसी चीजें होती है जो आंख को साफ करने वाली चीजें वो यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है आई टोन यूज करते हैं, बहुत अच्छा होता है, नई बॉटल लीजिए और उससे भी आपकी आंखें सफाई हो सकती है। बहुत से लोग जो है गुलाब जल यूज करते हैं घरों में, उसमें भी मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि गुलाब जल वही यूज करें जो अभी अभी बनी हो और शुद्ध हो, उसमें जो है कोई केमिकल ज्यादा ना हो, तो यूज कर सकते हैं, आंख की सफाई उससे भी हो जाएगी। सबसे अच्छी घरेलू दवाई आपके लिए जो है आंखों को साफ पानी से धोना, वो सबसे अच्छा फायदेमंद होता है इस वाले कंजंक्टिवाइटिस के लिए।
2: जी, जो हम पीने वाला पानी पीते हैं उससे धोले,
1: उससे भी धो सकते हैं, रनिंग वाटर जो टैप वाटर है उससे धोजिए, स्टिल वाटर से नहीं धोना चाहिए।
2: अच्छा अच्छा सर, एक सवाल आया है सरिता का चंडीगढ़ से, और वो ये कहती है कि अगर एक बार ही आई फ्लू हो गया है तो क्या फिर ठीक होने के बाद दोबारा भी आई फ्लू हो सकता है?
1: नहीं, दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है जिन लोगों को एक बार आई फ्लू होता है उनके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोज रहते हैं।
2: जी,
1: क्योंकि ये ऐसा बीमारी है वायरल का, इसका जो है एंटीबॉडी नहीं बनता है, जैसे हम वैक्सीन यूज करते हैं वैसा इसके लिए नहीं होता है, तो बार बार आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जिनको एक बार हो गया उनको तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए, जिससे कि दोबारा उनको इन्फेक्शन नहीं हो, दूसरे सीजन के आने से पहले ही जो है सारे जो है प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए।
2: जी सर, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तब वहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी ये इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में बच्चों को क्या आप बोलेंगे सावधानियां रखें, और उनके पेरेंट्स के लिए भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
1: उसमें यह है कि जैसे हम इस बार भी देख रहे हैं कि बच्चे काफी मात्रा में आ रहे हैं कंजक्टिवाइटिस से, इसमें क्योंकि बच्चे स्कूल में रहते हैं, एक ही क्लास में ज्यादा बच्चे साथ में रहते हैं, तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उनको जो है संभालना भी मुश्किल होता है, बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे को टच करते ही है। लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को पहले या दूसरे दिन में जो है स्कूल ना भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि स्कूल में डिस्कम्फर्ट भी नहीं फैलेगा। इसमें एक चीज जरूरी है कि बच्चों को समझाना कि सफाई रखें और आंखों को मलना नहीं है, क्योंकि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आंखों को मलेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आज के सीजन में यह है कि स्विमिंग पूल खुला रहता है, यदि बच्चे स्विमिंग करेंगे तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है और लोगों को भी। जिनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है उनको स्विमिंग पूल यूज नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा इस सीजन में लोगों को स्विमिंग जो है अवॉइड करना चाहिए।
2: जी सर बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटा सा हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं ये एक गीत, और आज का हमारा टॉपिक है सीजनल आई फ्लू एक्यूट कंजक्टिवाइटिस।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर
1: 102.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में आज मैं हूं आपके साथ मस्त मलंग आरजे श्वेता। और रेडियो डॉक्टर में आज का हमारा टॉपिक है आई फ्लू। डॉक्टर साहब आपका भी एक बार फिर से स्वागत है स्टूडियो में। और जिस तरह से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इतने पेशेंटली आप उनके जवाब दे रहे हैं और इतने अच्छे से, सो हमारे पास और भी सवाल आए हैं। और ये कहते हैं कि नमस्ते डॉक्टर साहब, इफ आई वॉन्ट टू कंसल्ट स्पेसिफिकली यू इन एम्स फॉर माई आई प्रॉब्लम, हाउ कैन आई डू दैट। ये रमेश ने दिल्ली से मैसेज भेजा है।
2: नहीं, लोगों को ये भ्रांति रहती है कि एम्स में जो है बहुत दुविधा होगी अपॉइंटमेंट लेने में। हमारे पास जो है अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी है, आप अपॉइंटमेंट करा सकते हैं।

0: और आरपी सेंटर में जहां आंखों का डिपार्टमेंट है आप डायरेक्टली वॉक इन कर सकते हैं। सुबह जो है 8:30 हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और 10:30-11 बजे चलता रहता है।
1: हमारे पास और भी बहुत से जो है सवाल आए थे और कॉल्स भी आ रही है, तो सर कंजंक्टिवाइटिस जब हो जाता है एक बारी, उसके बाद आपने बोला वो दोबारा भी हो सकता है अगर आप सही से अगर उसका क्योर नहीं करेंगे, जब हम उनके लिए दवाइयां डाल रहे हैं सर, तो कितना हार्मफुल हो जाता है अगर दो बार भी हो जाए आंख की पुतली के लिए या आंख की नसों के लिए?
0: जहां तक ये कंजंक्टिवाइटिस है लकीली काफी सेफ रहता है। इस पर हम देख रहे हैं कि जितने हमारे मरीज आ रहे हैं उनकी सीवियरिटी, हम कहते हैं ना बहुत गंभीरता इसमें कम है इस बार लकीली जो है। बहुत सारे मरीजों को जो है केवल जो है सफेद पार्ट, जो आंखों का सफेद पार्ट है तो उसमें इन्फेक्शन होता है, उसी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं।
1: जी जी।
0: कभी कभी जो काली पुतली में इसका असर हो जाता है तब जाके जो है बीमारी ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि सफेद धब्बे आ जाते हैं आंख के ऊपर, उसको साफ होने में बहुत साल लगते हैं और धीरे धीरे आपकी नजर कम हो जाती है। लेकिन आपको बार बार कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो फ्यूचर में जो है आपको ड्राइनेस होने के चांस रहते हैं। तो ये ड्राइनेस जो है एक बार हो जाए ऐसी बीमारी के कारण तो फिर उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, फिर आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको प्रिकॉशन रखना है कि कोई चीज जो है क्रॉनिक ना हो जाए।
1: हमारे पास एक कॉलर है, जानते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
2: मैं सुनील जुनेजा बोल रहा हूँ, एक्चुअली लक्ष्मी नगर से।
1: जी।
2: मैं आरपी पेशेंट हूँ, तो मेरा 2015 में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था।
1: जी।
2: तो उसके बाद कुछ टाइम तो ठीक रहा, उसके बाद ना कुछ धुंधलापन सा आने लग गया। उसके बाद मैंने आर्मी हॉस्पिटल है RR, वहां पे मैंने लेजर करवाया था उसका। उसके बाद थोड़ा क्लियरिटी तो आई है, लेकिन उसके बाद ये भी थोड़ा दिक्कत है, मतलब एक बार उसको चेकअप करा लेना चाहिए कि भी वो दोबारा सही से हुई है कि नहीं हुई, मतलब लेजर।
0: हाँ, आप सुनील जी आप चेकअप करा सकते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हैं जितने भी आरपी पेशेंट होते हैं उनकी जो है नजर धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि बीमारी जो है नस को खराब करती चली जाती है। जैसे आप कह रहे हैं आपके दोनों आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो कभी कभी जो झिल्ली होती है जिसके ऊपर हम लेंस रखते हैं वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो उसको लेजर से सफाई कर देते हैं। लेजर की सफाई नॉर्मली एक ही बार जरूरत पड़ती है, दोबारा जो है नहीं पड़ती, फिर भी जो है आपके केस में हम एक बार चेक कर सकते हैं और जो है बता सकते हैं कि क्या कारण है किससे नजर आपकी कम हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक और मरीज थे हमारे जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, आप जो है लो विजन एड यूज करेंगे तो जितनी भी नजर आपकी बची हुई है वो नजर हम आपको बढ़ा करके आपको देखने में सुविधा दे सकते हैं।
1: तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल जानते हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, मैं जिया चड्ढा बोल रहा हूँ।
1: जी,
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार चड्ढा जी, बहुत नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, जब ये आई फ्लू होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, तो काला चश्मा पहनने के लिए बोलते हैं, तो क्या स्पेसिफिक मेडिकेटेड होते हैं या घर में जो गॉगल्स यूज करते हैं वो पहन सकते हैं? दूसरा, हमारे फैमिली मेंबर को हुआ है, तो वो जो आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं अगर किसी और को होता है तो वही यूज कर सकते हैं या के अलग से नया लेना पड़ेगा?
1: जी, अगर आप सुन रहे होते मतलब शो, तो कि डॉक्टर साहब ने दोनों का ही जवाब दे चुके हैं।
0: चड्ढा जी, हम दोनों का जवाब दे चुके हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ड्रॉप जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट आपको एक आंख के लिए दूसरी और दूसरे आंख के लिए दूसरी ड्रॉप यूज करनी चाहिए। जहां तक काला चश्मा है, कोई भी चश्मा यूज कर सकते हैं। हमारा जो आइडिया ये है कि चश्मा होगा तो हाथ बार बार आपके आंखों में नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों को जो है रोशनी में देखने में दुविधा आती है उन लोगों को जो है गॉगल्स लगाना जरूरी है, काला चश्मा, जिससे कि लाइट आंख के अंदर कम पड़े। सुविधा के लिए कोई भी चश्मा, प्लेन चश्मा भी लगा सकते हैं, जिससे कि आंखों में प्रोटेक्शन हो जाए।
1: जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो।
4: हाँ मैम, प्रणाम
1: जी। क्या नाम है आपका, क्या सवाल है आपका?
4: जी, सतीश पांडे गार्डनिंग से बात कर रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या सवाल है?
4: मैम, 2 दिनों से एक महिला को आंख में इन्फेक्शन हुआ है।
1: जी।
4: और उसका एक छोटा बेबी भी है, मतलब वो बेबी का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही है, वो क्या करना पड़ेगा?
0: हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
4: नमस्ते सर।
0: नमस्ते यार, कैसे हो आप?
4: जी बिल्कुल बढ़िया है।
0: मैं चाहता हूँ कि जो मदर है माना बेबी को ठीक से केयर भी नहीं कर रहे, जैसे हम बोलते आ रहे हैं कि बेबी की आंखों को जो है साफ पानी से धो के रखेंगे और मदर अपने हाथों को साफ रखेंगे तो ये बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। यदि वो अपनी आंखों को टच करती है या आंखों का जो कीचड़ है साफ करती है उसके बाद हाथ धो लें तभी बेबी को पकड़े तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
4: मतलब रात को बेबी को लेकर सोना पड़ता है, 1 साल का है
0: वो, तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप अपने हाथों को धो के रखेंगे, सोने से पहले हाथ धो लेंगे तो ये चांसेस जो है इन्फेक्शन के कम रहेंगे और अपने

0: जैसे वाइजर जो है
1: ये
0: इन एयर भी होता है क्या, और अगर किसी को हुआ हो उसकी आंखों में देखने से आई टू आई भी हो सकता है,
2: फिर
0: क्या बताने का
3: कष्ट
0: करें
2: जी। ये
3: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जैसे पहले भी कहते आ रहे हैं कि ये छूने से फैलता है और देखने से नहीं फैलता है। देखने से तो आदमी को प्यार फैलता है, आपको बीमारी नहीं फैलती भैया।
2: क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। यहाँ पर एक छोटा सा हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं ये एक गीत, और आज का हमारा टॉपिक है सीजनल आई फ्लू एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस।

0: 102.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज मैं हूं आपके साथ मस मलंग आरजे श्वेता, और रेडियो डॉक्टर में आज का हमारा टॉपिक है आई फ्लू। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए।
1: जितेंद्र दूसर से ग्राम मऊतेश्वर जिला हरिगढ़ से बोल रहा हूँ
0: जी। क्या सवाल है आपका?
1: सर मैं दोनों आँखों से ब्लाइंड पर्सन हूँ, मेरा 11 काला मोतिया का बोलते हैं जो काला पानी है, उसकी दो सर्जरी हो

0: चुकी हैं 11।
1: नहीं, अभी
0: गुरु नानक आई सेंटर, हाँ, गांधी आई।
1: तो अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है?
0: अब सर घर बैठे हैं।
1: तो उसमें यदि आप चाहो तो एक बार जो एम्स दिल्ली है वहाँ के आई हॉस्पिटल आरपी सेंटर में आ सकते हो। आजकल एक ऐसे डिवाइस हमारे पास है जो आप लगाएंगे उस डिवाइस को तो आपके एक मीटर या दो मीटर के डिस्टेंस में आप जो है लोगों को पहचान सकते हैं उस डिवाइस के थ्रू। यहाँ तक कि आप कलर पहचान सकते हैं और जो है लोगों के बारे में पता चल सकता है कितना हाइट है, क्या डिस्टेंस है, कलर क्या, ये भी पता चल सकता है।
0: एम्स में?
1: हाँ हाँ, एम्स में।
2: तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया है और ये पूछ रहे हैं कि आप कोई एक ऐसा योग जो है वो रेकमेंड कर सकते हैं आई हेल्थ के लिए। प्रवीण ने महाराष्ट्र से मैसेज भेजा है।
1: तो नॉर्मली जो है आई हेल्थ के लिए योग जो है काफी फायदेमंद होता है। हमने एम्स में बहुत सारे रिसर्च किए हैं योगा के द्वारा जो है ग्लोकोमा बीमारी का कंट्रोल करना, आंखों का प्रेशर कंट्रोल करना, ये बहुत ही आजकल जो है कॉमन है। वर्ल्ड ओवर लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आराम से जो है कोई भी एक्सरसाइज आंख के लिए कर सकते हैं, जैसे आंख बंद करके आंखों को चारों तरफ घुमाना, पलकों को बार बार जो है झपकना अपने जानबूझ करके, या फिर दूर देखना। आप जो है 5 मिनट तक दूर देखते रहेंगे उसके बाद आंख बंद कर लेंगे, तो ये छोटी बहुत एक्सरसाइज है जिससे आपकी आंखों के मसल जो है ठीक हो जाते हैं और आंखों जो है दुविधा भी कम हो जाती है।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास लगातार कुछ जो सवाल है वो रिपीटेड आ रहे हैं कि किस तरह से अगर पूरे परिवार को हो जाता है तो हम क्या क्या जो प्रिकॉशंस है वो ले सकते हैं, और किस तरह से जो घर की महिला है उनको अगर हो जाता है तो फिर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
1: हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही कैसे वैलिड है, क्योंकि घर की महिला जो होम मेकर है उसको हो जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि सारा काम तो वही करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो ऐसे जैसे हम कह रहे हैं कि जो कपड़े हैं, जो शेयर करते हैं, जो टेबल्स हैं, उसको बार बार साफ करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रखें। तो मेन मुद्दा यह है कि सफाई कैसे रखी जाए, आपके हाथों को कैसे साफ किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाथों से या जो टेबल्स हैं उसके थ्रू फैल सकता है।
2: जी।
1: जैसे मैंने कहा था घर में जो सबसे ज्यादा लड़ाई जो है आपके रिमोट के लिए होती है और रिमोट में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है।
2: जी।
1: तो उसको साफ रखना, उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है।
2: हुँ.
1: तो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा शुरू में 2-3 दिन इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
2: हुँ.
1: और यदि सभी को हो गया फिर तो जो है आपको ये प्रिकॉशन रखना है कि आपको कोई और बीमारी नहीं हो जाए आंखों में।
2: जी।
1: क्योंकि जब भी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है कंजक्टिवाइटिस का, ऊपर से कोई भी बीमारी इसमें लग सकती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, आपने गलती से जो है स्टीरॉयड ड्रॉप डाल दिया तो आंखों में अल्सर हो सकता है।
2: अच्छा।
1: उससे आपकी नजर खराब हो सकती है। तो ये देखना है कि एक्स्ट्रा कोई चीज उसमें जुड़ने जाए या कॉम्प्लिकेशन हो जाए।
2: जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो।
3: हेलो
2: जी, अपना नाम।
3: नमस्कार जी, मैं सतीश कुमार लोधी रोड से बोल रहा हूँ।
2: जी, क्या सवाल है आपका?
3: डॉक्टर साहब, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मैं ये अभी आपने जो बोला कि ये डिवाइस लगता है, क्या मुझे भी इसका कुछ फायदा हो सकता? और दूसरा, ये आई फ्लू में क्या गर्म पानी से भी आंख साफ कर सकते हैं? दो क्वेश्चन है मेरे।
1: हाँ, पहली बात यह है कि जो डिवाइस हमारे पास है वो आप आइए, आपको हम जो है ट्रायल देते हैं, यदि आपको उससे कुछ फर्क महसूस होता है तो उसके लिए आप जो है कर सकते हैं। दूसरा, आप कह रहे थे कि जो गर्म पानी से आंख धो सकते हैं, धो सकते हैं, लेकिन ऐसे में जहां इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा हो, आंख में लाली हो, सूजन हो, ठंडे पानी से धोएंगे तो ज्यादा आराम मिलेगा आपको।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, वक्त जो है वो हमेशा ही कम पड़ता है और सवाल बहुत सारे हो जाते हैं। जाते जाते अगर आप आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात जो हमसे छूट गई हो, कोई भी इम्पोर्टेंट बात या जो आप टिप देना चाहते हैं हमारे लिसनर्स को, तो प्लीज आप जरूर बताइए और एक बार फिर से बता दीजिएगा क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए।
1: मेरे ख्याल से हमने श्वेता जी सारा कुछ कवर कर लिया। जहां तक प्रिकॉशन लेना है कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो कैसे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि पहला इम्पोर्टेंट यह है कि अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। यदि आप अपने आप को बचा सकते हैं मतलब कि सारे जो है इन्फेक्शन फैलने से बचा सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, उनको क्या प्रिकॉशन लेना है। जो हम बता रहे थे, अपनी आंख की सफाई रखना जरूरी है। यदि आंख में आपको धुंधलापन आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ही आवश्यक है, और बाहर निकलते तो काला चश्मा पहन के निकलिए, और जैसे घर आते हैं तब सबसे पहले काम जो है हाथों को धो लीजिए साबुन से या रनिंग वाटर से। यदि आंखों में कीचड़ आ रहा तो आंखों को धो के साफ रख लीजिए।
2: तो ये जितने भी आपने टिप्स दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने सारे सवालों के, इतने सारे फोन कॉल्स के, आपने बड़े आराम से और बहुत ही पेशेंटली जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए।
1: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि श्वेता जी आपने इतना अच्छा संचालन किया आज। और ये टॉपिक ऐसा है कि हमें नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है।
2: जी।
1: तो सबको ये जो है जानना जरूरी है, जितना प्रिकॉशन लेते हैं

0: उसके बावजूद भी हो सकता है, होने के बाद प्रिकॉशन लेना भी बहुत जरूरी है, जो हम यहाँ बात करते आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब,
0: थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।
1: आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में मौजूद थे एक्सपर्ट के तौर पे डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, आरपी सेंटर एम्स, और आज का जो टॉपिक था वो था सीजनल आई फ्लू एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। तो दोस्तों यहीं पर अब हमें दीजिए इजाजत, अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

नमस्कार, चार बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत हुई। संसद में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से

एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26

ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। देशभर में आज आयकर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस विकसित भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समीह से खेलेंगी। शतरंज में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहिन ने किया। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगला कार्यक्रम है अल्फाजन।

और अभी जिसकी वाणी आप सुन रहे हैं वो हूँ मैं, यानी आपकी मस्त मस्त आरजे माला लेकर आई हूँ प्रोग्राम अल्फा जेन। अल्फा जेन में हम बात करते हैं यूथ से जुड़ी हुई, अल्फा जेन में हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो हमारी यंगर जेनरेशन के बीच में बड़े ही पॉपुलर हैं, जिन पर बात करने के लिए वो हमेशा तैयार हैं, जिन चीज़ों के लिए वो हमेशा ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेट करें। तो आइए, आज आपके पार्टिसिपेशन की दरकार है, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे AI के इस दौर में आपने अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सपैंड किया, क्या कुछ क्रिएटिव बनाया, बताइए मुझे। नंबर है मेरा 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए मस्त मस्त आरजे माला के साथ प्रोग्राम अल्फा जेन में और बताइए आपकी क्रिएटिविटी में आपने क्या कुछ खास कर दिखाया है विद द यूज ऑफ AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फटाफट से मैसेजेस करते जाइए और आपके मैसेजेस मैं पढ़ूंगी यहाँ पर लाइव अपने इस शो में जिसका नाम है अल्फा जेन। लेकिन फिलहाल अभी समय है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। अभी से बस कुछ ही समय में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे और उसके बाद वापस आकर अल्फा जेन में आपके मैसेजेस को लाइव पढ़ूंगी मैं यहाँ पर आकाशवाणी FM रेनबो पर।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। आजकल के तेजी से बदलते जीवन शैली और खान पान के तरीकों में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही है। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग जैसी समस्याएं इनमें से कुछ है जो गंभीरता से नजर आ रही है। इस लम्हे प्रोग्राम में हम उच्च रक्तचाप और किडनी रोग के बारे में विस्तार से जानेंगे आपके आरजे चेतन से। यह हाइपरटेंशन किडनी डिजीज कारणों की चर्चा करेंगे और इनके प्रति उचित सचेतता फैलाने का प्रयास करेंगे। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसमें रक्तचाप की स्तर मानक से अधिक होता है। ये एक स्थिति है जो धीरे धीरे विकसित होती है और आमतौर पर लोगों को पहले से ही पता नहीं चलता है। अगर यह समस्या नियंत्रित नहीं हो जाती है तो ये दिल, दिमाग, किडनी और अन्य शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकती है। उच्च रक्तचाप को अन्यथा हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह वह बल है जो मानव रक्तवाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ कार्य करता है। ये बीपी रक्तवाहिकाओं के प्रतिरोध पर निर्भर करता है और हृदय को कितना कठिन प्रदर्शन करना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ये समस्या होती है, लेकिन अनजाने में हम अपनी जिंदगी चला रहे होते। लेकिन अनुपचारित उच्च रक्तचाप से स्ट्रोक, हृदय रोग और कभी कभी मृत्यु हो सकती है।

सकती है। हाइपरटेंशन का मुख्य कारण अंतर्निहित चिकित्सा और मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है। ब्लड प्लाज्मा की मात्रा, हार्मोन गतिविधि, तनाव और गतिविधियों की कमी, क्रॉनिक किडनी रोग, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, गर्भावस्था या कुशिंग सिंड्रोम को उच्च रक्तचाप के मुख्य कारण माना जाते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक नहीं किया जा सकता है, ये क्रॉनिक बीमारी है और 90% रोगियों में उच्च रक्तचाप का कारण अज्ञात होता है। इसे दवा के साथ और जीवन शैली और खाने की आदतों में कुछ संशोधन के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर नियमित चिकित्सा ध्यान देना है और अपने चिकित्सक के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होती है। किडनी रोग एक और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें किडनी की क्षमता मामूला से कम हो जाती है और ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण ये है दोस्तों, खान पान की गलत आदतें, अधिक नमक, अल्कोहल और अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है जो बाद में किडनी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। मानसिक तनाव और स्ट्रेस भी रक्तचाप में वृद्धि कर सकते हैं और किडनी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्तचाप और किडनी समस्या आमतौर पर बढ़ती है अनियमित जीवन शैली, डिसऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान, व्यायाम की कमी और अत्यधिक वजन, ये सभी उच्च रक्तचाप और किडनी समस्याओं के लिए प्राथमिक कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज के कुछ लक्षण इस तरह हैं: बार बार पेशाब आना, पेशाब में रक्त आना, थकान, सिर दर्द, नजरों में धुंधलापन, पैरों और एंकल्स में सूजन। तो इसके लिए क्या करें? कम नमक खाएं, कम तेल और सुपर फूड्स का सेवन करें। फल, सब्जियां, पूरे अनाज, मखाने जैसे आहार उच्च रक्तचाप और किडनी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। योग, ध्यान या साधारण सीखी गई व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित चिकित्सकीय जांच और टेस्ट से आप अपने रक्तचाप और किडनी के स्वास्थ्य की निगरानी कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप और किडनी रोग दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिनका समय पर पहचान और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, सही खान पान आदतें बनाना और नियमित चिकित्सकीय जांच से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। साथ ही सचेतता फैलाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करना चाहिए ताकि लोग इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसका सही समय पर इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार उच्च रक्तचाप के लिए काम करेंगे, जैसे स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, नियमित व्यायाम, अतिरिक्त सोडियम को कम करना, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना, धूम्रपान बंद करना और शराब का सेवन कम करना। अन्य उपाय जैसे संतुलित आहार खाना, तनाव कम करना, सांस लेने का व्यायाम करना और अपने

को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त भोजन का सेवन करना, प्राकृतिक सप्लीमेंट लेना, मुख्य रूप से प्राकृतिक उपचार खाते में गिना जाता है। तो दोस्तों, यह था हाइपरटेंशन और उसके असर अपने किडनी पर। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करता है और यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकता है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। तब तक चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: जाए।
1: जी हाँ, AI के इफेक्ट ने हिला कर रख दिया है हर किसी को। अब अगर बिजली गिरवानी हो कहीं या फिर आग लगवानी हो, AI का इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और AI के इन इफेक्ट्स के जरिए जिस तरीके से नए नए वीडियोस का क्रिएशन हो रहा है, हर दिन हम कुछ नया ऐसा देख रहे हैं जिसे देख के ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ऐसा तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मतलब, और अगर ऐसी

कोई चीज जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते वो आपकी नजरों के सामने आ रही है, तो देन ऑफ कोर्स आपको लगेगा ओह माय गॉड एंड थैंक गॉड इट इज फ्राइडे। फ्राइडे के दिन आप है अल्फा जिन में मेरे यानी मस्त मस्त आरजे माला के साथ, और फ्राइडे के दिन हम करते हैं फुल ऑन मस्ती, क्योंकि फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसके बाद हमें बड़ी दिलासा मिलती है, बड़ी सुकून मिलता है कि हाँ अब वीकेंड आ रहा है और वीकेंड में हमें जो करना है हम वो करेंगे, जो हम नहीं कर पाए वीकडेज में वो हम वीकेंड में करके ही दिखाएंगे और वो आप कर ही डालते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे यूथ हैं जो ये सोचते हैं कि वीकेंड के दिन में हम कुछ ऐसा करेंगे जो क्रिएटिव हो, एआई का इस्तेमाल करेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपने क्या सोचा, क्या किया आपने, हमें भी बता दो भाई, और हमें बताओगे तो पूरी दुनिया को पहुंचेगा ये संदेश आपका। तो फटाफट से मुझे ये बता दो कि आपने एआई का इस्तेमाल करके क्या कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो अपने आप में वाओ इफेक्ट देता है, तो हमें भी बता दो। नंबर है 9868107070, 9868107070, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए अपनी मस्त मस्त आरजे माला के साथ, अपनी आवाज को दीजिए ग्लोबल पहचान, क्योंकि आपके मैसेजेस जब पहुंचेंगे पूरी दुनिया तक तो उन्हें भी तो पता चले कि इसी दुनिया में एक बहुत महान क्रिएटिव इंसान है जिसका नाम है डैश डैश डैश, और जिन्होंने किया है डैश डैश डैश। अब इस डैश डैश डैश में आपको अपना नाम और अपनी क्रिएटिविटी को डालना है। नंबर फिर से सुन लो, 9868107070, 9868107070।

0: कोयल सितेरी बोली कु तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: समय हो चुका है 4:24। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AI के इफेक्ट के बारे में, AI के यूज के बारे में। और जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी भागीदारी चाहिए यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हमारा आज का जो युवा है, हमारे जो यूथ है, वो AI का इफेक्ट या AI का जो इस्तेमाल है उसको किस तरह से अपने कामों में कर रहे हैं और क्या कुछ क्रिएटिव या नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैसेज तो हमारे पास आने शुरू हो गए, मैं पढ़ती हूँ मैसेज। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप नहीं किया है तो फटाफट से नंबर नोट कर लो और बता दो कि आपने भी क्या कुछ कमाल कर दिखाया है AI का इस्तेमाल करके। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 9868107070 9868107070 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और जुड़ जाइए अपनी मस्त मस्त आरजे माला के साथ और बताइए आपने क्या कुछ खास कर दिखाया है AI का यूज करके। ये मैसेज जो हमें आया है, ये भेजा है हमें पूजा राम चक्रवर्ती ने। इनका कहना है कि मैंने AI के यूज से अपने बहुत सारे आइडियाज को क्लियर किए हैं। वो मुझे ऐसे सवालों के जवाब बहुत आसानी से देता है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती या फिर शायद मैं अपनी लाइफ में उन बातों को कभी जान ही नहीं पाता, जैसे कि मेटाफिजिक्स, ऑल द माइथोलॉजी और भी बहुत कुछ। भले ही मैं बाहर कुछ क्रिएट नहीं कर पाया हूँ और नहीं मैंने अभी तक क्रिएट किया है AI से, बट मेरे अंतर मन में बहुत कुछ क्रिएट और क्लियर हुआ है। भाई ये तो आजकल के युवाओं का कहना है ही, क्योंकि AI का इस्तेमाल करके बहुत सारे सवालों के जवाब जिसके लिए हम पहले दर दर भटकते थे, अब उसके लिए हमें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही इनोवेटिवली और बहुत ही क्रिएटिव वे में हम न सिर्फ अपने सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं बल्कि

उसके आगे भी एक और फर्दर स्टेप ले लेते हैं। आपने भी क्या वो फर्दर स्टेप लिया है, कुछ ऐसा क्रिएट किया है जिससे लोगों को चौंका दिया हो? अगर ऐसा कुछ किया है तो हमें बता दो, मैं कर रही हूँ इंतजार। ये है प्रोग्राम अल्फा जिन, मैं हूँ आपके साथ मस्त मस्त आरजे माला, और नंबर है मेरा 9868107070, 9868107070।

0: कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत,

0: वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सिर्फ एआई के इस्तेमाल से हम बहुत कुछ क्रिएटिव पा लेते हैं, बहुत कुछ ऐसा हमें मिल जाता है जो हम चाहते हैं इमेजिनेशन में कि हमें मिल जाए, लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं था, बट विद द यूज ऑफ एआई अब आप वो सब कुछ कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बच के रहने की भी बहुत जरूरत है एआई से जुड़े हुए उन नेगेटिव चीजों से जो कि कई बार आपको इस दुविधा में डाल देते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं। ये जो हकीकत और झूठ के बीच का जो फर्क है ना, एआई की वजह से कई बार बहुत बहुत छोटा, बहुत माइनर रह जाता है और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ पर जो नहीं है वो ये है कि आकाशवाणी रेनबो के थ्रू आप पहुंचते हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रीच जो है वो कितनी बड़ी है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगला मैसेज मैं जिनका पढ़ने वाली हूँ वो मैसेज हमें आया है सऊदी अरेबिया से, और मैसेज हमें भेजा है उमेश जी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उमेश जी हमारे साथ इतनी दूर से जुड़ने के लिए। और ये देखिए टेक्नोलॉजी का ही असर है कि अब दुनिया दूर नहीं एकदम पास हो गई है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग करो और वहां से फोन उठता है और आपको पता चलता है कि आप तो किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गए। खैर वैसे उमेश जी ने जो लिखा है वो भी बहुत अमेजिंग है। उमेश जी कहते हैं, गुड टॉपिक सिलेक्टेड बाय यू एंड मेड द प्रोग्राम वेरी इंटरेस्टिंग। रिगार्डिंग एआई यूज, इट इज रियली यूजफुल माय डेली ऑफिस वर्क एज वेल एज पर्सनली एंड न्यू थिंग लर्निंग। तो मतलब अपनी डेली लाइफ में जिस तरह से ऑफिस के कामों के लिए एआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे इनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। आई यूज एआई टू ड्राफ्ट माई ऑफिशियल लेटर्स एंड रिव्यूइंग ऑफ लेटर्स एटसेट्रा। मतलब क्रिएटिवली न सिर्फ ऑफिशियल लेटर्स ड्राफ्ट करते हैं बल्कि जो लेटर्स इनके पास आते हैं उनको रिव्यू भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। मैं आपको एक बताती हूँ किस्सा। हमारे घर के पास एक लड़का हुआ करता था जो लैंग्वेज में बहुत पुअर था। मतलब सिचुएशन ये थी कि अंग्रेजी के हाथ पैर तोड़ने वाली बात जो है वो वाला हिसाब किताब था, लेकिन आज की डेट में विद द यूज ऑफ एआई वो क्रिएटिवली जिस तरह से रिज्यूमे मेक करता है, बनाता है, और जिस तरह से वो अलग अलग लेटर ड्राफ्टिंग के काम करता है या कंटेंट राइटिंग के काम करता है, वो अपने आप में अमेजिंग है। और इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो लोग कर रहे हैं एआई के ज़रिए। आप भी कुछ कर रहे हो क्या? तो बताओ ना पूरी दुनिया को। आपको पता नहीं है क्या, आकाशवाणी का हमारा जो चैनल है ना, हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुँचता है और आप हमारे शोज़ को बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो अभी न्यूज़ ऑन एआईआर का ऐप डाउनलोड कीजिए और एफएम रेनबो दिल्ली को सेलेक्ट कीजिए। ना सुनाई दे आपको मेरी यानी मस्त मस्त आरजे माला की ये आवाज़ तो फिर नाम बदल देना मेरा। ऐसे नाम तो मैं यही रखूंगी क्योंकि आप प्रोग्राम भी ज़रूर सुन पाएंगे। तो अगर आपके पास भी है कुछ ऐसा बताने को एआई से रिलेटेड जो आपने क्रिएट किया है तो झटपट व्हाट्सएप करके बता दो 9868107070 पर 9868107070।
1: बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

एआई का इस्तेमाल करके क्या कुछ क्रिएटिव किया है। नंबर नोट कर लो जी, 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए मस्त मस्त आरजे माला के साथ अल्फा जेन प्रोग्राम में। और आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, जो हमें भेजा है विशाल मल्होत्रा ने सिरसा हरियाणा से। कहते हैं कि मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं काम करता हूं। गूगल तो अपने आप में एक है ही, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू ये एआई का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें ये उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें डेवलप करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें जब वो क्रिएटिव कर रहे होते हैं तो उनको इस बात का भी एहसास होता है कि लाइफ में हम हर पल कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और अगर ज़िंदगी में चीज़ें आसान हो रही हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एफर्ट्स करना छोड़ दें। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अब जो हमें नया मिला है उसके बाद नए स्टेप पर आगे बढ़ने के लिए हमें फिर कुछ और नया ढूंढना होगा और फिर कुछ और नया करना होगा, न कि एआई के इस्तेमाल के बाद चीज़ें आसान होने के बाद हम रुक जाएं। क्या बात कही है सर आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, बहुत सारे लोग बताने को भी तैयार हो गए कि उन्होंने क्या कुछ नया किया है। तो बता दो ना, 9868107070 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, जुड़ जाइए मस्त मस्त आरजे माला के साथ प्रोग्राम अल्फा जेन में। कहाँ सुन रहे हो? आकाशवाणी रेनबो और का।

कभी कभी ऐसा लगता है कि नेचुरल चीजों पर भी अगर एआई का एकाधिकार साबित हो जाए तो फिर कितना मजा आ जाए। बात थोड़ी सी आपको घुमावदार लगी होगी, सीधे तरीके से बताती हूँ। अब देखो, हम सोचते हैं कभी कभी कि बहुत गर्मी हो रही है, बारिश हो जाए। अब हम एआई के थ्रू वीडियोस में या कहीं पर भी किसी फोटो में हम वो इफेक्ट तो दिखा सकते हैं, लेकिन क्या हम रियल लाइफ में एआई का इस्तेमाल करके बारिश करवा सकते हैं? कितनी आगे की बात है। नहीं, वैसे फायदा तो बहुत हुआ है। विकास राजपूत को गाजियाबाद से बहुत फायदा हुआ है भाई। अब कैसे फायदा हुआ है बताती हूँ मैं आपको। एआई की बात कर रहे हैं हम। एक्चुअली मैंने आपसे पूछा है ना आज अल्फा जेन में कि एआई का इस्तेमाल करके आप क्या कुछ खास कर रहे हैं, क्या विशेष किया आपने क्रिएटिव। तो विकास राजपूत हमें बताते हैं कि अंग्रेजी में मैडम बहुत दिक्कत होती थी, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, एआई का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक तो ये फायदा हुआ, दूसरा फायदा ये बताते हैं कि इनको अपना घर डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया और क्या अमेजिंग रिजल्ट इन्हें मिला है। ओहो, कहने क्या क्या बात है सर। एआई का इस्तेमाल अगर इस तरह से किया जाए कि हमें फायदे ही फायदे हो जाएं तो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी महान बात है। तो इस तरह की महान बातें अगर आपके पास भी हैं बताने को, कुछ खास आपने किया है एआई का इस्तेमाल करके, तो हमें फटाफट से बता दो। फिलहाल मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बारिश को इंजॉय करने वाला हो रहा है, तो मैं यहाँ से गाने बजा के देखती हूँ बारिश आज होती है या नहीं।

नाचने का मन करने लग जाता है जब भी हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। उम्मीद नहीं होती मिलने की, लेकिन मिल जाए तो नाचने का मन करता है। बहुत सारे लोग AI का इस्तेमाल कुछ इसी तरह से कर रहे हैं, जैसे कि नहीं हो पाती थी चीजें लेकिन अब कर पाते हैं। लास्ट मैसेज आज का इस प्रोग्राम का ले लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है ना

हर सिंह जी ने सेक्शन ऑफिसर हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, कहते हैं एआई की मदद से बहुत इजीली ड्राफ्ट कर पाते हैं लेटर्स को और उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज अल्फा जिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए अपनी मस्त मस्त आरजे माला को, इसी तरह से एआई का इस्तेमाल करते रहिए अपनी बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि वो आपकी स्ट्रेंथ बने, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाए। मस्त मस्त आरजे माला सेज टाटा, बाय बाय और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। ये परियोजना प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन या भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की

0: मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
1: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के एक साथ और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
2: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामा जारी रहने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said during the meeting they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
4: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
3: Meanwhile, spokesperson of CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
5: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
3: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed this today while talking to the reporters at the Parliament premises. Mr. Rijiju said the government

0: सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for strong action in cases of paper leaks will be introduced in the Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
4: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
3: Spokesperson of the CJP, Ashutosh Ranka, who was part of the CJP delegation, claimed that the government has in principle agreed to two of their demands.
5: There is an in principle agreement on compensation and legal cases. It is positive.
3: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today said that Prime Minister Narendra Modi has emphasized that there should be no delay in bringing a stringent bill to prevent malpractices in examinations. Talking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said the country also wants

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: Our voice gets you heard everywhere.
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय कठोर दण्डस्य विधानाय च एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बलारी गुंतकल रेल परियोजनायै अनुमोदितं 64,12,00,000,00,000 परिमितं द्रव्यम्। अपरत्र अंगीकृता त्रि रसायनोद्यान संवलिता भव्य रसायन परियोजना। केन्द्रीय मंत्रीभिः सीजेपी प्रतिनिधि मंडलेन सह नवदिल्ल्यां संपादितं उपवेशनम्। श्वस्तावत् पुनः प्रवर्तयिष्यते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणं समाश्रित्य संसदि अद्यापि अनुवृत्तः कोलाहलः। प्रतिपक्षस्य विरोधोद्घोषेण सोमवासर पर्यन्तम् अपवारितं संसदः कार्यजातम्। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य अथ मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन प्रकटीकृतः तीव्रः खेदः। अपि च विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रश्नपत्र गोप्यता भंग अथ परीक्षा कदाचार प्रकरणानां द्रुत न्यायालयानां संस्थापनाय सहैव कठोर दण्डस्य विधानाय एकस्य प्रारूप विधेयकस्य स्वीकृतिः प्रदत्ता। संसदि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां

0: सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अस्य प्रारूपविधेयकस्य अनुमोदनं कृतम्। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य आर्थिक कार्यसमित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेश राज्ययोः मध्ये स्थितस्य बल्लारी गुंतकल रेलखण्डस्य रेलपथपंक्तेः निर्माणप्रस्तावाय स्वीकृतिः प्रख्यापिता। अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अब्रवीत् यत् एषा परियोजना आन्ध्रप्रदेश कर्णाटक राज्ययोः मध्ये गमनागमन सम्पर्कं भृशं दृढयिष्यते। एषा कार्ययोजना तावत् प्रधानमन्त्री गतिशक्ति राष्ट्रिय महायोजनायाः आधारेण परिकल्पिता वर्तते, यस्याः मुख्यं लक्ष्यं तावत् एकीकृत नियोजनेन तथा हितधारकाणां परामर्शैः बहुमाध्यमिक सम्पर्कस्य अथ सम्भारदक्षतायाः समभिवृद्धिः वर्तते। केन्द्रीयमन्त्री जेपी नड्डा डॉ जितेन्द्र सिंहः चेत्येतौ अद्य नवदिल्ल्यां सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। सम्मेलनात् परं वार्ताहरैः सह भाषमाणः श्रीनड्डा अवोचत् यत् उपवेशनावधौ तैः परीक्षा प्रणाल्यां परिष्काराणां विषये तैः सीजेपी प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः धैर्यपूर्वकं श्रुताः। श्रीनड्डा अवोचत् यत् प्रतिनिधिमण्डलेन तिस्रः मुख्याः याचनाः उपस्थापिताः, सहैव प्रश्नपत्रगोप्यता भंग प्रकटनस्य रोधनाय केचन उपायाः अपि प्रतिपादिताः। केन्द्रीयमन्त्री समेधितवान् यत् सर्वकारः श्वः प्रतिनिधिमण्डलेन सह पुनः द्वितीयचरणस्य वार्तां विधास्यति। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे सहैव छात्राणां विरोध प्रदर्शनमधिकृत्य अद्य पञ्चम दिनेपि संसदि अविरत कोलाहलेन उभयोः सदनयोः कार्याचरणं सोमवासरं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा राज्यसभा समवेता तदा गृहराज्यमन्त्रिणा नित्यानन्दरायेण 26,2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकम् उपस्थापितम्। एतद् विधेयकम् 171 अधिनियमस्य संशोधनार्थं वर्तते। विधेयकस्य उपस्थापनात् परं विपक्षिणः नीट प्रकरणमादाय उच्चैः विरोधोद्घोषान् प्रारभन्त। इतस्य कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरं यावत् अस्थगयत्। इतः प्राग् प्रातः 11 यदा राज्यसभायाः कार्याचरणम् आरब्धं तदा सदनं कार्गिलयुद्धस्य हुतात्मवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रादात्। सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रावोचत् यत् कार्गिल विजय दिवसः 99,191 कार्गिल युद्धे भारतस्य विजयस्य स्मारकं वर्तते। उच्च सदने हुतात्मवीराणां स्मृतौ मौनमपि संधृतम्। अपरत्र नीट विषये छात्राणां प्रदर्शनं चाधिकृत्य विपक्षस्य विरोधेन लोकसभायाः कार्याचरणमपि सोमवासरं यावत् अपवारितम्। मध्याह्ने 12 प्रथम स्थगनात् परं यदा सदनं समवेतं तदा संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः न्यगादीत् यत् सर्वकारः प्रथम दिनादेव नीट विषये चर्चायै सन्नद्धो वर्तते। सः प्रावोचत् यत् कांग्रेस दलेन नूतन पक्षाश्रयानारोप्य चर्चायां विघ्नः उत्पाद्यते। मंत्री गदितवान् यत् प्रधानमंत्री देशम् आश्वासितवान् यत् अस्मिन् विषये कठोर विधिः आनेष्यते। श्री रिजिजुः विपक्ष नेतारं राहुल गांधिनं न्यवेदयत् यत् सः स्वसंसदीय सहयोगिनां मार्गदर्शनं कुर्यात् येन सदनस्य संचालनं सुचारुरूपेण भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तानावृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जायमानस्य अत्याचारस्य सहैव मानवाधिकार हननस्य संयुक्त राष्ट्र संघेन कृताम् उपेक्षामादाय भारतेन तीव्रः खेदः प्रकटीकृतः। संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी इत्यसौ प्रावोचत् यत् अन्येषु देशेषु एतादृशानां घटनाक्रमाणां संयुक्त राष्ट्र संघेन तीव्र निंदा क्रियते, परंच पाकिस्ताने जायमानेषु एतादृशेषु कृत्येषु अवधानं नैव प्रदीयते। सः शान्तिपूर्ण विवाद निवारण तंत्राणां सुदृढीकरणम् इति विषये आयोजिते सुरक्षा परिषदः मुक्त विवाद कार्यक्रमे भाषमाणः आसीत्। अद्य सर्वोच्च न्यायालयः नीट यूजी प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे केन्द्रीय प्रशासनं राष्ट्रीय परीक्षाभिकरणं च परीक्षा परिष्काराणाम् अनुष्ठान प्रगतिमालक्ष्य विशद शपथ पत्रम् उपस्थापयितुं समादिदेश। पर्यावरणविदः सामाजिक कार्यकर्तुः च सोनम वांगचुक इत्याख्यस्य 26 दिनात्मकं सुदीर्घम् अनशनम् ह्यः रात्रौ गुरुग्रामस्य एकस्मिन् निज चिकित्सालये विश्रान्तिमगात्। एतत् अनशनम् जेपी नड्डा जितेन्द्र सिंहयोः गरिमामय उपस्थितौ सम्पन्नम्। वांगचुक वर्येण निगदितं यत् बहुविधानां पक्षाश्रयणाम् उपरि सुदीर्घ विचार विमर्शस्य अनन्तरमेव एषः निर्णयः गृहीतः। अद्य भारतस्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः भारत रोमानिया देशयोः मध्ये आर्थिक निवेश सम्बन्धानां विस्ताराय आह्वानम् अकरोत्। तया प्रोदीरितं यत् द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गभीर वाणिज्यिक सहयोगाय अदूषिता अनन्ता च क्षमता विद्यते। विश्व कनिष्ठ स्क्वैश प्रतियोगितायां भारतस्य क्रीडिका अनाहत सिंहः मिस्र देशस्य हबीबा रिज्क इत्येताम् 11-7 11-5 6-11 11-9 इत्यंकांतरालेन पराभूय प्रागुपान्त्य चक्रं विजित्य उपान्त्य चक्रं प्राविशत्। विजयेनानेन अनाहत सिंहः अस्मिन् विश्वस्तरीय द्वन्द्वे अश्रान्तं द्वितीयवारं उपान्त्यचक्रं प्राप्य प्रथम भारतीय क्रीडिकात्वेन इतिहासम् अरचयत्। सम्प्रति सा खलु स्वर्णपदकस्य शीर्षक विजयाय परिगणिता वर्तते। इति वार्ताः।
1: বাতৰিৰ পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰ 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানটি। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় যোগাভ্যাস আৰু সুস্বাস্থ্য। অনুষ্ঠানটিত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছে যোগ প্ৰশিক্ষক কাকলি মহন্ত। অনুষ্ঠানটি ৰাত ধৰিছে স্নেহা পাঠকে। এয়া দ্বিতীয় খণ্ড।
2: নমস্কাৰ। আকাশবাণীৰ সমূহ শ্ৰোতাকে শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানৰ আন এটি খণ্ডলৈ মই স্নেহা পাঠকে আদৰণি জনাইছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ অনুষ্ঠানত বিষয়বস্তু হিচাপে আমি বাছি লৈছো যোগাসন আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ, আৰু এই সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো যোগ প্ৰশিক্ষক কাকলি মহন্তক। তেখেতৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ প্ৰথমটি খণ্ডত আমি ইতিমধ্যেই আষ্টাংগা য়োগাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো। সেই আলোচনাটিৰ পৰৱৰ্তী অংশ আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো।
3: এতিয়া 5 লিম্বটো হৈছে প্ৰত্যাহাৰা। প্ৰত্যাহাৰা মানে ধৰি লওক পৰিত্যাগ কৰে, য়ামা নিয়ামা আসন ফিজিকেল আমি বাহিৰৰ বডিখিনি দেখা পাইছো। এতিয়া আমি ভিতৰলৈকে যাম, যোনবিলাক হায়াৰ লেভেল অফ কনচিয়াছনেছ, যোনবিলাক সূক্ষ্ম বস্তুবিলাক যদি আমি মেডিটেশ্যন কৰোঁ, ধ্যান কৰোঁ, আমি দেখা নাপাওঁ কিন্তু ইণ্টাৰনেলি আমি সেই বস্তুবিলাক ফিল কৰোঁ। গতিকে ইণ্টাৰনেল লেভেলটো যোৱাৰ আগত আমি এক্সটাৰনেল লেভেলবিলাকৰ পৰা ক্ৰছ অভাৰ কৰি ভিতৰলৈকে সোমাম। গতিকে প্ৰত্যাহাৰা হৈছে এক্সটাৰনেল আৰু ইণ্টাৰনেলৰ মাজৰ এখন দলং বা ব্ৰিজ। আমি পৰিত্যাগ কৰি পেলাই এতিয়া আমি ওপৰ লেভেললৈকে যাম। ছিক্স নম্বৰ লিম্বটো হৈছে ধাৰণা। ধাৰণা মানে হ'ল আমি অসমীয়াটো কওঁ যে ধৰা বা ধৰি ৰখা বা হ'ল। ধাৰণা মানে হ'ল ধৰা। এতিয়া আমি কি ধৰিম? আমি মনটো ধৰিম। মনটো ইমান আমাৰ চঞ্চল যে আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। চ' আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব মনটো এটা পইণ্টত বা বিন্দুত কেনেকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি ইয়াৰ পিছত ধ্যান কৰিম। গতিকে ধ্যান কৰিবলৈ আমি এটা স্থিৰ মনৰ উপযোগিতা প্ৰেক্টিছ কৰিব

0: আহি পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি, গৱেষণা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ মান উন্নয়নত ইয়াৰ বিশেষ ভূমিকা থাকিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰি বজালীৰ ভালুকী অঞ্চলত চৰকাৰী ভূমিত ঔদ্যোগিক পাম স্থাপন, বজালী জিলা আয়ুক্ত সংহত কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ ত্বৰান্বিত কৰা আৰু বজালী জিলা চিকিৎসালয় শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ বাবেও চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনোৱা হয়। সংবাদমেলত অৰুণোদয় আঁচনি, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মহিলা আত্মসহায়ক গোট, যুৱ সমাজ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যৱস্থাৰ শলাগ লোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা হয়। উপৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে স্কটলেণ্ডৰ গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা বাৰ্তাত শ্ৰীৰাধাকৃষ্ণনে এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় এথলীটসকলে দৃঢ়তা আৰু ক্ৰীড়া সুলভ মানসিকতাৰে অৱতীৰ্ণ হৈ দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। শ্ৰীমোদীয়ে আজি সামাজিক মাধ্যম যোগে দিয়া এটা বাৰ্তাত ভাৰতীয় এথলীটসকলে প্ৰতিযোগিতাত উৎসাহ, দৃঢ়তা আৰু উদ্যমেৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আজিও অপৰিৱৰ্তিত। বানত 2023 গাঁৱৰ 10 লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত। বান ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহৰ বিধায়ক, জিলা আয়ুক্ত আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত পৰ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ বাবে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পৰা সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक के अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: प्रतिनिधि मंडल के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
4: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर

0: ইমানপৰে শ্ৰোতাসকলে ভজন অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ পাছৰ অনুষ্ঠানৰ ঘোষণা এতিয়াই শুনিবলৈ পাব।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई

0: नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से

0: बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज